कदू मिलांगे। मेरी तन ना रात बीत दी ना दिन लिंग दर ए पैरा लिखे भेजे है पिता गुरु नु मिले है। कहन लगे मेरा बेटा मेरा आज्ञाकारी पुत्र तड़फदा पे है। उस वक्त क्या जाओ भाई मेरे उस आज्ञाकारी पुत्र नु लेके आओ। दरबार हाजिर होए ने पिता गुरु दे दर्शन कीते ने। पिता गुरु ने घुट के सीने नाल लाया मानो दो जोता एक हो गईयां। हर पासे एक आनंद जिहा खिलर गया ते बेमुहारा मन एक है।

नाम खसम का चित न किया, कपटी कपट कमाना। जे तू किसे न दे मेरे सहबा, क्या को कड्ढे गणा। नानक बिनवे सो किछ पाइए पुरब।

இல்லையானு குரு பிரபு உடனமையான நாம இன்னும் இருக்கு. சஜாவுக்கு சுட்டி சுத்தி பார்க்க பொருள்லக்கா கேர் லகா புத்தா தும் நோ மீ நோ மிந்துவினி கேர் குரு பாய் சஜா காது तो गुरु का हुक्म ही मने आए तेरी पर क्योंकि हुक्म इस वक्त हुक्म दे मालिक की बख्शिश नाल जेड़ा हुक्म देना वो रहमत भी नी तो हुक्म नहीं मनिया तो मैं जरूर मनना ये अपने आप रह जाएगा तो गुरु जान के तेरी सेवा ते जे भजे नसेगा ना तो सामने कोठी में बंद भी कर रहे हैं। मैं गुरु का हुक्म मानना भाई सिद्धा उसके तुरन लगा मैनू कौन है बंद करने वाला बुद्धू शाह ने मुरीदा ने इशारा किया इन्होंने पकड़ के भाई सज्जे को कोठी बंद कर बुद्धू शाह ने मेरा बाल बच्चा भुख नाल मर जाए बुद्धू शाह ने क्या नहीं जिन्हें हुक्म दिता है वो आपे रक्षा करेगा ये तेरे मन की कमजोरी की रक्षा करेगी बुद्धू शाह एवं तो गन्ना बुद्धू शाह जी उसको गन्ना सिख धर्म बिगाड़ बच आके मुश्किल नाल उठाया उसने और मुंह च पानी पाके कहता सतगुरे की कीता मैंने उधर कैद पता चे मेरा बाल बच्चा सब उनकी मर्जी कौन खिलाती जाए कोठी बंद एक दिन बीतिया कुछ नहीं खादा पी दूजा दिन होया बुद्धू शाह ने किया सजे प्रसाद तक नहीं मैनू भुख नहीं तीजा दिन हो सोचने लगा मैंने बाल बच्चे तब भुखना मर गए होंगे तू भुखा क्यों मर गए अब तो सही है वो तो बड़ी राज है भुख बड़ी पर्वन है फरीद ने क्या मौतों को हो गई इंसान भुख से कई मेरी बढ़िया बढ़िया गलतियां कर मारने की लिखा है दुख विछोड़ा एक दुख भूख एक दुख सख्त वार जमदूत एक दुख रोग लगे तन खाए व्याज न होने का सात पानी सकल लग गया नौ महीने बीत समय नौ बीत गया समय ना पता ही नहीं पला दिया कड़िया कड़िया ने सकेंद्र चिंता ने मिनटा ने कंटे कंटिया ने पैर पैर ने दिन दिन ने हफ्ते हफ्तिया ने महीने महीनिया ने साल साल दिया सदिया सदिया के युग बीते जा रहे युग अखी केरे माट के पल पल भी विहाए पल पल करके के आयु बीती पता नहीं लगता मन जंजाल ना छोड़ी जम दिया जब हम दिन के पैर पैर के कड़िया हजूर के ना आव घटे पर नौ महीने मैं भाई सज्जा तेरे पौ पद मोकले हैं अज नौ महीने बीत गए हैं तू जा सकते भाई सज्जा तू जाओ किधर जाओ बाल बच्चा तो पुखना मर गए यार तू कोई आसरा नहीं किड़े पास जाओ तू पुछा ने किया जी मेरे को गुरु को चला गुरु को बुद्धू शाह आओ तो मेरा कोई बाल बच्चा बचे नहीं कोई बच भी गया होगा तो उन्होंने भी रोक के मरांगा कि गुरु का नाम भुल के नहीं जाए लुकी बंदी छोड़ के चंगा बंदी छोड़ गुरु नौ महीने की कैद दे मैं नहीं जाना सही बुद्धू शाह ने किया तो भाई सज्जा ये भी कोई राज है तू नहीं समझ मच्छी की जाने साधन के डाव
پانی چڑھتی ہوئی مچھلی کو ساگر دانت نہیں ہوتا. تو کرے آج پھر پڑھیے ابھی رکے نہیں. گرو اپنی دلیل پہ پرکھن لگے, گرو کی سکھی نو اپنے خیال پرکھنے. ارے گل پڑھ لکھے پہلے پیچھے سارے اس کے

मैं मछली कैसे अपना कैसे देखा तय तय उनसे निकली मछली पानी को बिछड़ी नहीं तो जीवन हो गया। गुरु का सिख जिस वेले गुरु ने हुक्म च रहा है तो बख्शिश ही बख्शिश है, जिस वेले मनमत आ जाता है तेरे का ही आन होता है अपने पानी जो चले पाई सो बिछड़े जो मच्छी की जाने सागर के दावत पंछी की जाने आकाश के दावड़ा पाई सचास की जाने गुरु के दावड़ा है मेहमान न जाने दे वे वा पार तेरा बार भाई सज्जा चला जा गुरु कौर जे विचार बनाया है तो एक चिट्ठी भी मेरी नहीं है जाके गुरु को देके अरदास करी कदे मैं पापी से ही बख्शिश करी गुरु मैनू भी दर्शना दिता भाई सज्जे ने किया ठीक है गुरु साहब अगे गुरु की चिट्ठी तेरे को ले आया हां ते तो 9 महीने तक दिता है ये तेरी पत्रिका लेके गुरु को चला गया गुरु 18 महीने तक देगा उन्होंने की कर मैं नहीं जानता चंगा भी तेरी मैं ख्याल है चलो मना अपने पिंड चलते शहर कोई बच ही गया हो तो भाई सज्जा अपने पिंड चलते आया की वेखिया जिथे कखा की चुली सी उथे आलीशान मकान बनिया बिर बिर पिया तक जे सुदामे ने तकिया सुदामे उत्ते भी यह समाया भगवान कृष्ण से सुदाम दोवे सुदीपन की कोई पढ़ते विद्या पढ़ एक दिन समीपन की भी घरवाली ने किया बचे हो की मां जी घर भी लकड़ा कोई नहीं लकड़ा लिया जंगल दोवे तुरंत समीपन की भी घरवाली ने सोचिया बच्चे हम जल्दी नहीं जा रहे हैं तो लगेगी सुदामिया गल सुन कौन है

करके दे रहे हैं। फिर धोती फटी सिलटी दुपटी, इसको धोती तेरह पर फटी हुई, धोती फटी सिलटी दुपटी, नहीं पाए पनिया ये आहे निशान। भगवान जी उन्हें पैरा दिखती कोई, ये निशानी है।

दोए भले। एक संत एक राम, राम जो दाता मुकत को संत जपावे नाम। महापुरख दी ड्यूटी है जग्यासु नू निरंकार दे चरणा नाल जोड़ के नाम जपाउण दी, ते अकाल पुरख वाहेगुरु नाम जपन वालियां नू मुक्ति प्रदान करदा है, उनां नू जन्म मरण तो रहत करदा है। पर निंदक लई कोई थां नहीं, जेड़ा महापुरखां दी निंदा कर रहा है उस मनुख नू जहर देण दी लोड़ नहीं, वो तो पहला ही मर चुका है। महापुरखां दे तां दासां दा भी दास बनना है, क्योंकि जपन वालियां दी संगत करांगे तां सानू भी नाम मिठा लगेगा। हजूर मोर लगा रहे हैं इना बचना ते के संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। जपन वालियां दी संगत करिए तां नाम मिठा लगन लगदा है, पर अभाग हन ऐसे मनुख जिन्हां नू जपन वालियां दी संगत नहीं मिली। उन्हां दा जीवन अधूरा है जिन्हां नू जपन वालियां दी संगत नहीं मिली। बाबा नंद सिंह जी महाराज जो सास ग्रास भक्ति करन वाले सन, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अखर अखर विच उन्होंने गुरु नानक दा दर्शन कीते। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी महापुरख ते जिना महापुरखां पासों वरोसाए सन, बाबा हरनाम सिंह जी पुचो वालियां

तका कट जाई। तू हर पज मन मेरे पद निर्वाण, बहर न होए तेरा आवन जान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मानयोग साध संगत जीओ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी

क्या घट जाई। तेन भिक्षा मंगाएगा ता भी तेन चेते करदा रहना, ते ये याद राज दे देगा मैं ता भी तेन चेते करदा रहना। ए नहीं कि मैं राज दी वडियाई विच पै जाणा ते समझना भी सब कुछ राज ही है, ते भिक्षा मंगावे ते मैं तेन गाला कढ़न लग पवा भी तू कहदा रब मैनु दिता कख नहीं। वह कहंदे नहीं, किसे हालत विच भी मैनु रखे, मैं मेरा कम है तेन चेते रखना, तेन याद करना। इतिहास की एक वार्ता है सतगुरु गुरु हर राय साहब के इतिहास की। उन्हां दा एक सिख होया, बड़ा गरीब जिहा सिख सी, किरती किसान, भाई पूंगर करके इतिहास ने उहदा नां दिता है। खेती करदा मिहनत, पर गुरु साहब के दसे उपदेश के मुताबिक अमृत वेले उठदा, नाम जपदा, बाणी पढ़दा, फिर अपनी किरत विच लग जांदा। कोई अतिथि आवे, आया गया लोड़वंद, कोई जिज्ञासु आवे, उह सेवा करदा। ते एक चलदा फिरदा साधु भी आ गया, बड़ी सेवा कीती उसने, बड़ा प्यार कीता। ते उस साधु दे मन विच ख्याल आया भी इस बंदे कोल दौलत नहीं है, पर प्यार, सेवा, हमदर्दी, मनुखता दा सब तो उच्चा गुण जो किसी दौलत नाल प्राप्त नहीं हुंदा, इस मनुख दे कोल है। ते मेरे कोल पारस है जो सोना बना सकदा है धात नूं, ते इस नूं पारस दे देवां, इहदे कोल अमीरी दौलत आ जाएगी, ते होर भी वध सेवा कर सकेगा, इहदी गुरबत दूर हो जाएगी। खबरे इसे वास्ते ही सेवा करदा होएगा कि कितों कुछ लभ जाए। उसने पेशकश कीती, उस सिख नूं कहा भी ये पारस तूं लै लै। कहण लगा मेरे किसे काम नहीं, मैनूं वाहिगुरू अकाल पुरख ने बहुत कुछ दिता है, गुरु दे उपदेश दे मुताबिक जिंदगी सबर सिदक नाल गुजर रही है, सेवा विच, नाम जपण विच कोई ढिल नहीं है, दसा नवां दी किरत करदा हां। वो कहण लगा नहीं, तेरा गुजारा तंग है, मुश्किल नाल रोटी चलती है। कहण लगा चंगा फिर, जे तुसी महापुरश हो, इसी गल ते आए हो, उन्हे कई मारी धरती ते, टोआ कढ दिता छोटा जिहा, आखण लगा इत्थे रख दिओ, ते मिट्टी पाती। समा बीत गया, साल दो साल लंघ गए, ते साधु दे मन विच ख्याल आया कि चल के देखा ते सही कि उस बंदे नूं पारस दिता सी ते उत्थे तां महल खड़े होए होणगे, नौकर चाकर होणगे सेवा करन लई। जिस वेले आया ते उहने वेख्या भी उह ते उसी तरह चल रहा कम, उहने पुछिया आण के, आखण लगा मेरा पारस। सिख कहण लगा मैनू तो याद भी नहीं, उह ते जिथे दबिया सी उत्थे ही होएगा, तू वरत्या नहीं। कहण लगा महापुरशो, मैं तुहानू पहलो भी कहा सी कि मैनू इस वस्तु की जरूरत कोई नहीं, मेरी जिंदगी गुरु पातशाह की सिख्या के मुताबिक बहुत वधिया गुजर रही है, ते मैं किसी लालसा नू लैके कोई सेवा धर्म कर्म नहीं करदा। बड़ा हैरान होया, आखण लगा मैनू अपने सतगुरू दे कोल लैके चलो। गुरु हर राय साहब की चरण शरण विच उस सिख ने लिया, ते गुरदेव ने समझाया, आखण लगे देखो तुसी बंदगी का रस्ता अख्तियार करके भी, साधु बन के भी, अजे भी इस ख्याल विच उलझे हुए हो कि कोई पारस हाथ लग जाए, किसे नूं अमीर कर दईए, किसे नूं कोई वर दे दईए, ते ओ फिर साडी पूजा करे। गल उथे दी उथे है, तुसा रब दी बंदगी नूं अजे भी बिजनेस बनाया होया। असा सिखां नूं ये समझाया है कि भाई किरत कोई भी करो, काम कोई भी करो, पैसे कितने भी आउण, घट वध इस गल दा सवाल नहीं, तुसी अपनी किरत विच शुक्र गुजार रहना है मालक दे, ते उस दी बंदगी दा पल्ला नहीं छड्डना। उस दे नाम तो वड्डा कोई पदार्थ नहीं, उस दे नाम तो वड्डा कोई धन नहीं, ते उस नूं अपनी जिंदगी विच गवाचण नहीं देना। आम तौर ते बंदा की करदा है, बंदा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जांदा है परमात्मा दा नाम प्राप्त करन लई नहीं, परमात्मा दी याद हिरदे च वसाउण लई नहीं, बल्कि जांदा इस लई है कि मैं इथों दुनिया की दौलत, संसार के पदार्थ लै लवां। पदार्थां दा बज्जा जांदा है ते पदार्थ उहदे पल्ले पै जांदे ने, पर उह उच्ची अवस्था जिहड़ी है ना कि इस दुनिया की पकड़ विचों उठण की हालत, उह इहदे पल्ले नहीं पैंदी। इस करके गुरुदेव ने गुरसिखां नूं कहा कि परमात्मा पदार्थ भी देंदा है, यह बख्शा भी उह करदा है, पर तुसीं परमात्मा की याद अपने हिरदे च वसाउण की कोशिश करनी है,
ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨਿਰਾ ਧਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਧਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ। ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮਾਲਕ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਚਾਕਰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਹੁ ਕਰ ਪਕਰੀ ਨਾ ਆਈ ਹਾਥ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੀ ਚਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਆਗ ਦਈ ਤਬ ਉਹ ਚਰਣੀ ਆਏ ਪਈ, ਸੁਣ ਸੰਤੋ ਨਿਰਮਲ ਵਿਚਾਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਗਤ ਨਹੀਂ ਕਾਈ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਤ ਉਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰਾਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿੰਨੀ ਵਿਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਐਸੀ ਯੁਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਕਿਤਨਾ ਆਵੇ, ਘੱਟ ਵੱਧ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਮੀਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁੰਝੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਇਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ

हे वाहिगुरु, हे अकाल पुरख, तू सारिया ते मेर कर, सारी सृष्टि ते मेर कर। तू मालक है, तू प्रतिपालक है, तू राखा है सबे जी समा, तू सारिया ते मेर कर। तू ईरखा, द्वेष, वैर, विरोध जो मना च अग लगी हुई है दूर कर, सारे अनु समत बख्श। जगत सड़ रहे है, अगा लगिया हुई ने, तू कृपा कर। तू मालक है, सारिया ते कृपा कर। जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार, जित दुआरे उभरे जिते लेहो ओबा। तू सारिया ते मेर कर, सारे तेरे ने, तू सारिया की कृपा कर। ये अरदास है कि अन्न पानी मुच उपाए, ये पदार्थ सारिया नू दे, सारिया ते कृपा कर। दुख दलिद्र भन कर, सारिया का दुख दूर कर। दलिद्र ये सब दूर कर, तू सारिया ते मेहर कर, मेहर कर।

वेद पुराण पुकारन पोथिया नाम बिना सब कूड़ गाली होशी। नाम तो बिना मनुख सखना है, इसलिए महाराज ने नाम अमृत सानू बख्शन लई। सब तो पहला पंज बाणिया दा अमृत खंडे बाटे दा अमृत तैयार करके साडे मुख च पाया अमृत ते आख्या ऐ गुरु के सिख हुण जदों तू गुरु के शब्द दी कमाई करेगा ना तेरा मन निर्मल हो जाएगा। जितनी कोई मुशक्कत कालेगा आप ही नहीं सारा कुटुंब ही तार के दरगाह नू लै जाएगा। इसलिए महाराज बख्शिश कर रहे हैं भाई अमृत पियो। ये बचन अपने पले बनांगे।

ताती भावना लग गई, पार ब्रह्म शरण आई। नो हार्म कम्स टू देम हु आर अंडर वाहिगुरुस प्रोटेक्शन। ऑन ऑल फोर साइड्स इज माय लॉर्ड्स प्रोटेक्शन। आई हैव मेट द परफेक्ट लॉर्ड हु इज द क्रिएटर। He has gifted me with the balm of Lord's name, and I have enshrined love for Him within myself. The Preserver has protected me and cured me of all my ailments. The Lord has taken me under His wings and has become my protector.

0: सिपाही दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कलगीधर शहनशाह बाजां वाली सरकार शेरां दी कौम दी नीं रख रहे ने खालसा पंथ दी नीं ते मुखों वाक फरमाया जिन्नी देर दुनिया कायम रहेगी ए कौम शेरां दी कौम सदाएगी सिंह सदा चढ़दी कला च रहणगे। गुरु साहब ने कौमां मजहबां दा वितकरा खत्म कीता ते कहा खालसा मेरा रूप होवेगा।
1: वेदां विच कहानियां

गुरु रामदास पातशाह की सिफत करदे होए कि समर्थ गुरु ने सिर दे उते हाथ रखिया है। जिस तरह गुरु अंगद साहब ने गुरु नानक साहब

जी हो गए ने ते सेवा करन लग पे, दिन रात सेवा कर दे ने। एक दिन गुरु अमरदास पातशाह जी इशनान कर रहे सन,

सुख छड के जंगलों में फिरना ते कंडियां ते सौना पेगा। अगर इन्नी कुर्बानी कर सकते हो ता ए जोत तुहाडे कोल रहेगी। क्या पिता जी सब कुछ कुर्बान करांगे पर ए सेवा साध संगत दी ए साडे कोल रहे। ता गुरु साहिबां ने वर दिता ते नाले कहा तेरे पति रामदास दी उम्र भी बहुत घट है, असी अपनी बाकी दी उम्र भी तेरे पति रामदास नूं दे के गुरगद्दी ते बिठावांगे। वो समा आया, गुरु अमरदास पातशाह दे दो जवाई सन, एक गुरु रामदास जी ते एक दूसरे। पहला प्रीख्या लई कहा कि थड़ा बनाओ, थड़े बनाए, गुरु साहब ने कहा ठीक नहीं ढा दियो, फिर ढा दिते, फिर बनाए, फिर ढवा दिते। दूसरे ता थक गए पर गुरु रामदास पातशाह बनांदे गए, गुरु अमरदास पातशाह ढवांदे गए। आखिर प्रसन्न होए, संगत बुलाई, अपनी जगह गुरु रामदास नूं सिंघासन ते बिठा के गुरु अमरदास पातशाह ने परिक्रमा कीती। पांच पैसे नरेल रख के मथा टेकिया, बाबा बुढ़ा जी ने मथे ते तिलक लाया ते सारी संगत नूं गुरु अमरदास पातशाह

रामदास पातशाह गुरगद्दी ते बैठे। गुरु अमरदास दे वेले ही गुरु रामदास पातशाह ने जिथे अज अमृतसर शहर वसिया होया है ए जगह खरीद के इथे गुरु अमरदास पातशाह दे कहण ते गुरु रामदास महाराज दे नां ते इसका नाम रखिया गया अते हौली हौली बदल के इहदा नाम अमृतसर कर दिता गया। गुरु रामदास पातशाह दे ग्रह तीन सपुत्रा ने जन्म लिया, वड्डे पृथ्वी चंद, छोटे महादेव अते उन्हां तों छोटे गुरु अर्जन देव पातशाह। पर तिन्हां पुत्रां दे सुभा बड़े अलग सन। वड्डे पृथ्वी चंद जिन्हां दा सुभा मायावल माया वाला सुभा, उन्हां तों छोटे महादेव उन्हां नूं दुनिया दे नाल कोई सरोकार जिवें नहीं। अते तीसरे गुरु अर्जन साहब जिन्हां दे मन विच सेवा भाव अते परमेश्वर दे चरणां दा प्यार हर वक्त गुरु रामदास पातशाह दे कोल बैठे रहना, इस वास्ते मैं दूर होवां। पिता गुरु रामदास नूं की पता है कदू लोड पै जाए ओ आवाज मारन, मैं दूर होवांगा। कोल इस करके रहिंदे सन कि पिता नूं इंतजार ना करनी पवे, जदू हुक्म करन मैं उदू सेवा कमा लवां। ओ गुरु रामदास जिन्हां ने ओ नगरी संसार नूं दित्ती कि जिस जगह अज भी जे कोई इंसान मन करके इशनान करदा है, गुरु रामदास दी वसाई नगरी अमृतसर सरोवर विच तां अपने आप उहदे मुंह तों निकलदा है, रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। इस हर मंदिर नूं भगती ते शक्ति दा सोमा समझ के दुनिया दे लोकां ने कई वारी बर्बाद करना चाहिया, पर जिन्हां ने बर्बाद करन दी कोशिश कीती समय दे नाल ओ आप ही बर्बाद हो गए। अहमद शाह बदाली उन्हें भी जदू देखिया कि सिखां दी शक्ति बड़ी वध गई, एक दिन इन्हां दा राज हो जाएगा, इस वास्ते सिखां नूं खत्म करन दी बड़ी कोशिश कीती पर पेश ना गई। तां पता लगा कि हरिमंदर साहब सरोवर विच इशनान करके कई सिख फिर नवे नरोए हो जांदे ने, शक्ति लैंदे ने। तां अहमद शाह अब्दाली ने सरोवर परवा दिता, बड़ा कुछ कीता इथों तक कि मसा रंगड़ दरबार साहब दे अंदर बैठ के हुक्का पीण लग पिया ते कंजरियां नचाण लग पिया। जदों सिखां नूं पता लगा ते खून खौल उठिया।

जे तुहाडा हरमंदर आजाद नहीं, तुहाडा एक घर आजाद नहीं, ते तुहाडे जीण दा भी कोई लाभ नहीं। ओ सिख नहीं जिनू ए पता लगे कि साडा हरमंदर कैद है, असी हरमंदर दे दर्शन नहीं कर सकते, ते ओ सिख चुप बैठा रवे, ओ सिख अकवान दे लायक नहीं हैगा। अज प्रण करो कि असी हरमंदर साहब नू आजाद करके रहना है। एक लेख मारी जकारा छड़िया, सारिया सिखा ने लीक टप्पी, ते बाबा दीप सिंह अपने जवाना दे नाल तुरे ने अमृतसर दे लागे। बड़ा भयानक युद्ध होया, एक पासे हजारा मुगल फौज, एक पासे गिनती दे सिख, पर सिखा नू जान प्यारी नहीं, अपना हरमंदर प्यारा है। अपनिया जाना वारिया अते बाबा दीप सिंह दा जदू सिर तू सिर धड़ नालों अलग हो गया, अपना सिर हथ ते चुक के खंडा बांधिया होया, दुश्मना दा नाश कीता, ते अपने हरमंदर नू आजाद कराया। क्यों के बाबा दीप सिंह जी जानदे ने ए गुरु रामदास दी नगरी, गुरु रामदास ने वसाई, ते जेड़ा भी इस नगरी ते हमला करेगा ओदा नाश हो जाएगा, ओदी कुल दा नाश हो जाएगा। भावे ओ कुछ चिर ता खुश रहिंदा है कि मैं कब्जा कर लिया, मैं हरमंदर नू बर्बाद कर दिता, मेरा कोई की बिगाड़ सकदा है, पर ए ता गुरु दी नगरी है, जिथे गुरु रामदास वसदा है, अकाल पुरख वसदा है, जेड़ा इनू बर्बाद

ज्ञान गुरु नानक पातशाह जगत जलंदे नु ठारन जो आए सी वेख्या संसार ते बड़े जुलम पहरे हन जे सकता सकते को मारे ता मन रोश न होई ता कोई रोश नहीं पर गरीब जनता नु लताड़िया जा रहा सी लहू दियां नदियां बहाइया जा रहियां सन सैदपुर दे पठान जो हिंदुस्तान ते काबज सन जनता नु लताड़ रहे सी बड़ी दुखी सी जनता बड़े हंकारी हो गए सन निरंकार दी लीला है पाप की जंज लै काबलों दाया जो के निरंकार दा खेल है ए बाबर ने भी राज भाग करने सी आके ते काट इस भी ना कीती हिंदुस्तान ते आके बड़े जुलम ढाए जिथे सैदपुर दे पठाना नू सजा मिली उथे फिर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह बाणी विच दस रहे हन जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो पाप की जंज लै काबलों धाया जोरी मंगे दान वे लालो मुगलां ने आके चढ़ाई कीती ते फिर जोर दे नाल आके दुनिया कोलों धन दौलत सब कुछ खो लिया गरीबां दे लहू बहाए जिथे शाहूकारां नू लुटिया उथे संतां साधुआं फकीरां नू भी पकड़ के अपने कैदी बना लिया ते जगत जलंदे नू ठारन लई आए निरंकार दा रूप कोट ब्रह्मंडा दे मालिक सुख जो देना सी संसार नू आप भी इस टोले विच हो विचरे जो कुछ लुटिया सी ए माल तन चुकन लई लोड़ सी उना नू ते सारिया दे सिरां ते पंडा रख दितियां ते अगे ला लिया धन गुरु नानक पातशाह जी दे सिर ते भी पंड रख दिती पर इना ने की तकिया के धन गुरु नानक पातशाह एक हाथ विच माला है दूजे हाथ विच काशा है ते पंड चार उंगलां सिर तो उपर चल रही है सिपाहिया ने जाके अपने सरदार नू दस्या भई एक फकीर ऐसा अजमत वाला है जिसने हाथ भी नहीं रखिया होया ते पंड नाल नाल चली आ रही है सिर ते उचारण करो श्री वाहिगुरु इना ने जिथे लुट दा माल कठा कीता होया सी नाल ही एक कैद खाना भी बनाया होया सी जिथे चकियां रखिया हुईया सन फौजां दे आटा पीन दे सारिया नू कणकां दित्तियां गईयां भई चक्कियां चलाओ भई ते आटा पीवो धन गुरु नानक पातशाह जी नू भी दित्ती गई ते गुरु नानक सच्चे पातशाह जिन्हां ने अरदास कीती सी जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार जित द्वारे उभरे तिते ले हो बार हे निरंकार तेरी सृष्टि इतना दुख भोग रही है इतनी कुरला रही है कृपा कर इना नु सुख सुखी कर धन गुरु नानक पातशाह मरदाने नु कहन लगे मरदानिया तेनू चक्की चलाउन दी लोड़ नहीं तू परमेश्वर दा सिमरन कर रबाब वजा बाणी आई है ते धन गुरु नानक पातशाह जी ने ए शब्द उचारण कीता के एती मार पई कुरलाने तै की दर्द ना आया हे निरंकार कृपा कर प्रजा ते बादशाह दा की मेल हुंदा है प्रजा दे गरीब बंदियां दा ते बादशाह दा मेल
इस तरह है जिवें एक शेर गौआं दे वग नूं अगे ला लवे पर उसका रथवाई उदी रखवाली करदा है। तू कृपा कर इस जगत जलंदे नूं सुखी कर। एक अरदास कीती जां पादशाह बाबर नूं पता लग्या कि एक ऐसा अनोखा फकीर आया है कैदी बन के जिदी चक्की आपे चल रही है, आप ओ गले विच दाने भी नहीं पा रहा, आपे ही दाने पै रहे हैं ते आपे ही पीछे जा रहे हैं। ता आके जदों दर्शन कीते, दर्शन कर दिया आत्मा शुद्ध हो गई। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। बाबर ने किया, हे बंदे खुदा दे तू कौन है? धन गुरु नानक पातशाह कहन लगा, मैं कोई होर नहीं, मैं भी उसका एक मामूली बंदा हां, पर तू बंदियां वाले काम नहीं कर रहा। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे बाबर नूं, भाई तू भाई खुदा दा बंदा है? आखे जी मैं खुदा दा ही बंदा हां। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे, जेड़े खुदा दे बंदे होंदे हन ओ खुदा दे बंदियां ते रहम करदे हन, जुलम नहीं ढांदे। जे किते बाबर खुदा दा बंदा होंदा तां फिर ए पशुआं वांगू दुनिया नूं मारदा ना, लिताड़दा ना, निरादर ना करदा। खुदा दे बंदे विच खुदाई होंदी है। खुदा संसार विच वस रहा है ते संसार खुदा विच वस रहा है। जे संसार नूं दुख देईए तां ओ दुख उस अकाल पुरख वाहिगुरु नूं पहुंचदा है। तू निर्दोष प्रजा नाल क्यों इहो जे जुल्म कर रहे हैं? हुण सिपाही हुक्म दी उडीक विच हन, भाई अज इस दा छुटकारा नहीं हो सकदा, क्योंकि एडी वड्डी गल कर रहे है फकीर। पर बाबर दा मन झुक गया जदों अपने अंदर दा शीशा वेख्या कि जिस वाहिगुरु ने, जिस अकाल पुरख ने एडे सुख दिते, एडियां वडियाईयां दित्तियां, ते मैं उसकी साजी हुई सृष्टि नूं सुख ना देवां, लताड़ा ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ? ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਣ ਤਾਂ ਕੌੜੇ ਬਚਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਮੁਨਾਰਾ ਸਨ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਖੁਦਾ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ अकाल पुरख वाहिगुरु दे चरणा विच बेनती कीती, हे निरंकार।

कर प्रसाद गुरुदेव अस्पदी। जय प्रसाद छती अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे। जय प्रसाद सुगंधित तन लावे तिसको सिमरत प्रमगत पावे। जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर। जय प्रसाद गिरे संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना। जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याये त्यावन जोग। जय प्रसाद पाठ पटंबर हटावे तिसे त्याग कत अवर लुपावे। जय प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय। जय प्रसाद तुझ सबको माने मुखता को जस रसन बखाने। जय प्रसाद तिरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म। प्रभु जी जब दर गए मान पावे नानक पत से ती कर जावे। जय प्रसाद अरोग कंचन देही लिवला वो तिस राम स्नेही। जय प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत। जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सन्नी पर ठाकुर प्रभु ताके। जय प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सास सास सिमरो प्रभु ऊचे। जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे। जय प्रसाद आपूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय। जय प्रसाद असव हस्त सवारी मन तिस प्रभु को कबू न विसारी। जय प्रसाद बाग मिलक तना राख परोए पर अपने मना। जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसे त्याई। तिसे त्याए जो एक अलख इहा उहा नानक तेरी रख। जय प्रसाद करे पुन बोधान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सास सास जितारी। जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप। जय प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात। जय प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह। जय प्रसाद सुने करन नाद जय प्रसाद पेख है विस्माद। जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे बसना। जय प्रसाद हस्त कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फल। जय प्रसाद परमगत पावे जय प्रसाद सुख सहज समावे। ऐसा प्रभ त्याग वर कत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो। जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो विसार। जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूल तू ताको जाप। जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे। जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू तास्यो राच। जय प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपे जप सोए। आप जपाए जपे सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए। सर्व निदान प्रभु तेरी मया आपो कछु न किन्हु लेया। जित जित लावो।